0: Radio Sarang 107.8 FM.
1: प्रत्येक पीड़िता लोगों मरो कार्यक्रम में मुगा स्वागत कोणी पदाम एक उन्हें सामुगुचन आयोजित इस आखोंगने कार्यक्रम अंत इन पदाम का निजाय की खुशी ची संतुष बरेत जल्लिया साथ अनेक संभ्रम अच्छी पदा अमी अनेक खाई कतना मुकले अनेक सुबेत पौधम चकतेर प्रस्तुत करता क्लॉड लिसोज अच्छा कोणेंतले लगनाची रात इन सुबेत पौध मुगुचनों तुम्हें ताई कया एकत्र वरिडियो सरंग 107.8 FM रंग रंगाड़ जिनी

इस पर दिपिटेदाड़ उमड़ो कार्यक्रम स्वागत एक सुबित पौध में एक कला एक लेंस मुख्य पौधा का मे है तहता हूँ मगोजन सुबित कोंगणी पौधा कैरन क्रास्टन गायले ते जाऊन आसा दरिया अलारा रे हेनरी डिसोजा पौध हंगे सर यूट्यूब पुणा मनता पौध आता एक एक तरफ रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगाल जी ने

ही इंसुलिन रेजिस्टेंस मधुमेह के कारण हो हृदय द्वारा लेप्टिन रेजिस्टेंस बनने दो दो जो मूल कारण है। सो आर रेजिस्टेंस का

0: इश्क मेरे यार संभलना मुश्किल हो गया।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM, इंदु मरयद हाडू।

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ।